और सतगुरां ने इस इलाके दे दसवंध लई ए सेवा इस नू दित्ती होई सी। और भाई फगू जी बड़े सिदक और प्यार वाले संत घर घर जाके गुरु के सिखां पासों दसवंध गुरु लई इकट्ठा करना ते फिर आनंदपुर साहब भेज दे। भाई फगू दे मन विच ख्याल इच्छा की है कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह मेरे घर आके चरण पान। इसने दरवाजा भी अपने घर का इतना वड्डा बनवाया कि गुरु साहब नू घोड़े तो ना उतरना पवे, घोड़े समेत ही मेरे

अज ए खुशी दी खबर इस नू मिली के सतगुरु थोड़े दिन तक धन गुरु तेग बहादुर साहब आ रहे हैं। ता इसने जिथे जिथे भी कोई गुरु का सिख सी जाके दसवंद लिया गुरु के खजाने विच रख दिता भई गुरु साहब आनगे ते एक एक दा नाम लैके ये दसवंद मैं भेटा करांगा गुरु के सिखां दा। सारियां कोलों जो भी किसे दी कुछ श्रद्धा है गुरु दे लिखे दिंदा ये लिया के गुरु के खजाने विच तजोरी विच रख दिंदा। एक माता इसने जाके आख्या भाई कोई गुरु लेके दसवंद देना ही माई कुछ घर की कल्पना करके बड़ी औखी हुई हुई सी झाड़ू दे रही सी आख्या ये कोई दसवंद लैन का समा है आख्या जो कुछ यही भाई दे दे ते जेड़ा भी उस झाड़ू दे नाल कूड़ा कट्ठा किया सी ओ चुक के उसने पाई फगू

अपने दर ते प्रवान कर दी ए गुरु नानक दा दर है जिथे प्यारी साध संगत एक तिल मात्र भी सेवा कीती होई व्यर्थ नहीं जांदी इसलिए भाई साहब।

एक कौड़ी मेरे पास है, कोई हजूर दे सुंदर दोशाले बेटा, करेगा कोई तान करेगा, कोई सोनल करेगा, कोई कुछ करेगा, ते जदो मैं एक कौड़ी बेटा करांगा, क्या मैनू शर्म ना आएगी, लज्जा ना आएगी। पर फिर मन विच आवाज आई हो गुरु तक गरीब निवाज है, वो तो माया नहीं वेखदा, वो तो सिख का हिरदा वेखदा, प्यार वेखदा। ते ए गुरु का सिख भी इस टोली दे नाल तुर पिया, ते जां सतगुरु दे दरबार पहुंचे, संगतां कीर्तन विच जुड़ियां, कीर्तन तो बाद जदों अपने अपने दसवंध पेटा घर लगियां संगतां, सारियां संगतां दे नाम बोले गए, जितनी जितनी भी किसे ने पेटा कीती सी, गुरु दे दर तों प्रसन्नता प्राप्त होई। काफी समा काफी टाइम बीत गया, तां गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भाई अजे एक ऐसा सिख है जेड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, पेटा रखी बैठा, ये कौन रखी बैठा है भाई गरीब, एडे कीमती सामान गुरु की पेटा विच पए हन, ते मैं कौड़ी कौड़ी बेटा करां गुरु, पर मेरे पास है भी तो यही हो जी। ए बेचारा उठता नहीं शर्म दे मारे, लांगरी सिंह आ गया, महाराज लंगर तैयार है, तुसी छकोगे तो संगतां भी छकणगी, ते आप कृपा करो। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, भाई जिन्हां ने पेटा देनी है ओ दे, अजे एक सिख ऐसा बैठा जिहड़ा सानू पेटा नहीं दे रहा, ते ओ पेटा देवेगा, ते फिर दीवान दी समाप्ति होवेगी, अरदासा होवेगा। साध संगत बोलो श्री वाहिगुरु। गुरु का हुक्म सुन के ए भाई गरीब नेत्रां तो जल आ रहा, नीवियां पाके हौले हौले गुरु के दरबार विच आके सतगुरु दे चरणा ते बह पिया, सच्चा पातशाह ओ मेरा देशाई, तू अंतर जामनी है, तू घट घट दे जानन हारा है, जिथे एडे राजे महाराजा

तेरी पेटा लई तो मैं कदों का इंतजार कर रही, तेरी पेटा लई तो मैं इत्थे बैठा हाँ। मैनू तो सिदक दी पेटा चाहिदी है, प्यार दी पेटा चाहिदी है। जे प्यार है तो सबो कुछ है, जे सिदक है तो सबो कुछ है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने एक सिख जेड़ा एक कौड़ी बेटा लियाया सी, शैव जी ने बड़े प्यार दे नाल एक कौड़ी अपने हाथ विच रखी ते सिख नू नाम दी दात बख्श के जन्म मरण तो रहत कर देता। तो भाई साहब कहंदे ने पावनी भगत भाए कौड़ी अगर भाग राखे, भाई गुरु ने तो तेरा हिरदा देखना है, तेरा प्यार देखना है, तेरी माया नहीं देखनी। वो तो जुगा जुगंतर देना आ रहा है। जे उसने माया देखनी होवे तां उहदे एक अख दे फुलकारे विच एक भिखारी नू चक्रवर्ती पातशाही मिल सकदी है। वो तेरी माया दा भुखा नहीं, गोविंद पाओ भगत दा भुखा। तेरे अंदर सिदक है गुरु सदा तेरे ते निहाल है, सदा तेरे ते दयाल है। भाई साहब गुरदास जी कह

राग भीम पलासी, दो राग ए आपस विच बहुत मिलते ने, धनासरी ते भीम पलासी इको ही सुरा ने इन्हां दियां। सिर्फ केड़ी सुर ते ठहरना है भीम पलासी विच ते धनासरी विच, केड़ी सुर ते इहदा ठहराव है, ठहराव करके ही इस दे राग दा रूप बदल जांदा है। भीम पलासी विच मध्यम ते ज्यादा ठहरना पैंदा है ते धनासरी विच पंचम ते, ते शब्द भी धनासरी राग दा है। जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे, तिन तिल नहीं कीमत जानी। तीन ताल विच इसकी बंदश है, अति सुंदर बहुत। सो आप जी श्रवण करो।

गुरु नानक सच्चे पातशाह एक जंगल विचों विचर रहे हैं। अकाल पुरख की कुदरत नू तकदे हां साहब जी मरदाने नू पुछन लगे मरदानिया मौत नू कितनी कु नेड़े समझता है।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू ही मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा देसाई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर परधन लियावे। सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे फूले, कपट ना कीजे अंत नवेरा तेरे जी पहले। जेरी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत न बेड़ा तेरे जी पै दीजे। एदे अमोलक स्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नूं भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदिया सोचदिया अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़े है, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे दिओ, मैं तुहानू 1 करोड़ रुपया दे दिंदा। जमदूता ने कहा एक पल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ए धन उथे चलदा नहीं, तू जिथे गल कर रहे उथे तां नाम दा धन चलदा है। इस कंजूस ने आख्या मैं 5 करोड़ दे दिंदा हां, मैनू कुछ स्वास होर दे। आखिर कहन लगा मैं सारी जीवन दी कमाई जितना भी मैं कमाया है मैं सारा ही दे देंदा हां, मैनू कुछ स्वास उसके बदले दे दियो। ता जमदूता ने कहा ए स्वास तां किसे भी कीमत ते तैनू नहीं प्राप्त होन लगे। ता कहन लगा फिर मेरी एक मंग है कि मेरी कबर ते लिख देना कि मैं सारे जीवन दे पल छिन कमाई विच धन कठे करन विच ला दिते, ते सारे जीवन दी कमाई दे बदले मैनू 1 श्वास भी नहीं मिलिया मुल। इस तो भाव है कि जितने अमोलक श्वास हीरियां लालां तो भी महंगे, मैं जप जप के सफल करने सी मैं व्यर्थ गवा दिते। क्योंकि हम आदमियां एक दमी पता नहीं अखीरला श्वास कदों आवे भाई, जे श्वास दे नाल तू जपया होवेगा ओ श्वास तेरा दरगाह विच कबूल हो जावेगा। इसलिए गुरु नानक सच्चे पात्र

नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया भाई पही प्राप्त मानख दे हुरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास ते जितने तक दुनिया विच

0: भेटे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: प्रेरणे की चुगी पहुंचे भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जी पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाढ़ी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उन्हां दे भी चरण चुमी है तुरे तां हन जेड़ा तुरिया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरिया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गल्ली बाती तो पहुंचिया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्ला नाल आजकल दी दुनिया गल्ला नाल ज्ञान चाहुंदी है और भाई महापुरुषां दा कथन है गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मंसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साई दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम फुहार कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वह दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के ताहीं।

تشبث به بهر حسه داره گروه مهردی لانگینگ پرزنت کرده ہیں، لانگینگ پیش کرده ہیں، ایک پیاس، ضرورت، ایک تڑپ کا ذکر کرده ہیں، اور آتے ہیں من لوچے ہر ملن کو، میرا من परमात्मा नु मिलना लोचदा है। इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर दुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया। ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि में साजन वाला है, जो उसमें पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसमें बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता, हर जी पिता, जो सपना का पिता माता है, उसमें मिलना चाहता है। और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वल्लों वैरागवान हो जाता है। दुनिया वल्लों मन जो है वो उदास हो जाता है। भाव उसनु कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है। उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू, अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मन लोचे हर मिलन, मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई, उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है। अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनु मिला। अते प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इसके विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद, एक पल, एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवें, मैनू मिल पवें, मैनू मौका दे देवें, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दें, अपने दीदार दे दें, अपने आप में मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालियां, मैं हर थां से पाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुझ जेवड़ ना साइया ऐसाई, तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

दर्शन कीते। हे रविदास इस आस ते बैठा है कभी ना तेरे दर्शन हो गए। हुण साध संगत जिदे मन विच इन्ना वैराग होवे ओ फिर दुनिया दे राग रंगा वल धन दौलत वल किवें ध्यान

सब कुछ है जो सत वचन नहीं तो फिर कुछ भी। एक कथा केवल सुनन वास्ते नहीं सिख्या वास्ते के पति पत्नी होन ते उन्हां दा सुभाव और विचार कैसा होवे भगत कबीर साहब वरगे। कबीर साहब कहंदे ने अखबार ते घरवाली कहती है सत वचन। हुण इस नूं सुन के असी अपने मन विच देखिए असी किन्ना कि एक दूसरे का कहना मनदे। पति कहंदा है ते घरवाली जी करके अगों बोलदी सत वचन कहंदी या घरवाली कुछ कहंदी।

वचार है। पर माता पिता और दुखी हो गए। अगे ते पुत्र दानी सी, अगो नू भी दानी निकली, अगो सतनाम सिलवाई। एक दिन माता पिता ने कहा, रविदास तेनू पाले और तेरा विआह कर दिता। सोचे असी तू कमाई करके सानू पवाएगा, पर तू ते दानी, असी तेनू कमा के नहीं खवा सकते। इस तरह कर, जो समान चाहिए लै लै ते वखरे हो जा। साडे वालों कमाई कर, साडे वालों दान करी। माता पिता ने वखरिया कर दिता। शाही रस्ते ते अपनी चुगी पा ली, चौपड़ी पा ली। पर अजमान डाढ़ा दुखी होया। मापिया ने केवल इस करके वखरे कर दिता कि मैं पैसे नहीं कमांदा ते कि दुनिया में जो

गंगा स्नान करेंगे। भगत जी घर वापस आए, दिन बीतते गए। एक महात्मा रविदास जी की चुप

कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान, कुछ अधखड़। जेड़े बुजुर्ग हैं एक मिनट वास्ते ये सोचन जवानी तो लैके हुण तक किन्नी दौड़ दौड़ी, किन्ना कुछ कीता। ते नौजवान जेड़े हुण दौड़ रहे ने, दौड़न की तैयारी पै करदे, आखिर साड़ी इस दौड़ का अंत की? माया पिछे दौड़ते, सुखा पिछे दौड़ते हैं, ठगियां छल फरेब झूठ भी बोलते, आखिर साड़ी दौड़ का अंत की? ए दुनिया इसे तरह रहनी है कि सुख धन दौलत सब कुछ इसे तरह ही रहेगा, पर साहब जी कहते ने दौड़न वाले तू ही नहीं रहना, बाकी तो सब कुछ

बड़े समय बाद ओही महात्मा फिर आए। पगली ओही हालत ते कुछ देने रवदास, मैं तेरे एक पारस दे गया सी। ते भगत जी कहते ने मैनू ते पता नहीं, जिथे रख गए सी उथे पिया होगा। आखो सतनाम सिद्ध वो पारस दरवाजे दे नालों खोलिया, पारस हाथ विच पकड़िया। ते वो महात्मा कौन है? वो महात्मा और कोई नहीं, आप हरि परमात्मा है। आखो सतनाम सिद्ध। प्रिख्या लैन आए सन, समझ गए भगत ने माया ते का

जिस पे मैं महात्मा गए, उस दिन तू भगत जी अमृत वेले जद उठते ने अपना आसन झाड़ते ने, पांच सोने दिया मोहरा निकल दिया, उन्हां मोहरा नूं ठीकरियां मिट्टी समझ के एक पासे सुट देते। जद मोहरा का ढेर लग गया, सुत्या पिया पाके आई रविदास, ये ठीकरियां नहीं मिट्टी नहीं, ये सोने दिया मोहरा ने, मैं अपनी खुशी नाल तैनू दे रहा, इहदे विच मेरी खुशी है। सवेरे एक सेठ आवेगा तेरे सोहने मंदिर मकान बनाने वास्ते, इनकार ना करे। एकदम भगत जी उठ के बैठ गए, घरवाली नूं उठाया ते सारी गल दसी। घरवाली ने कहा, भगत जी जे परमात्मा की इच्छा है फिर सानू इनकार नहीं करना चाहिए। दिन चढ़िया, एक सेठ आ पहुंचे, मोहरा दियां थैलियां भरी, मथा टेक के कहन लगा, भगत जी मेरे घर पुत्र कोई नहीं सी, मैं सुखना सुखी जे मेरे घर पुत्र होवेगा ते रविदास भगत दे मंदिर मकान मैं आप बनावांगा। उस परमात्मा ने मैनु पुत्र बख्शे, उस परमात्मा ने मैनु पुत्र बख्शे है ते मैनु हुण आके आ दियो, मैं सेवा कर। सोहणे मंदिर मकान बन गए, भगत रविदास की जय जयकार होण लग पई। पर सात संग इस समा केड़ा सी, एक भी कौड़ा सच है, ओ समा सी जद कोई नेवी जात दा मंदिर नहीं सी जा सकता, कोई पूजा नहीं सी कर सकता, उस वेले दी कथा। अज भी कई स्थान ऐसे हैं जिथे नीवी जात दे स्टूल कास्ट नहीं जा सकते। हुण भगत दी सोभा चार सवेरे फैल रही है, और ये सोभा चितौड़ का जिहड़ा राणा है उहदी राणी ने भी सुनी। इंडिया दे विच चितौड़ एक बड़ा ही मन्या पर मन्या शहर है, इत्थे दे राजपूत राजे बड़े मशहूर होए ने चितौड़ दे। चितौड़ दा राजा जिन्हां नूं उत्थे दे लोग राणा कह के बुलाते, राणी दी राणी चाला बाई ने, ये बड़ी रब दी प्यारी सी, इसने भी भगत दी सोभा वड्याई सुनी ते मन विच सोचिया, भगत रविदास

समय ना ने ये शब्द पूरा पड़ी शब्द सुने राणी का अता गुस्सा ते जांदा रे ते फिर राणी ने कहा चलना भाई कुछ ब्राह्मण आए ने बनारस तो कहंदे ने तू चमार नु गुरु बनाए राणी कहन लगी चलो मेरे नाल दरबार आके उन्हां पंडतां नु कहा जिन्नी चुक सको उन्नी धन दौलत दे आगे सच दसो सच्चा भगत कौन है आए माया वास्ते सन जद माया मिली ते जेड़े पहला निंदया करते सन ओही कहन लग पए भगत रविदास वर्गा ते भगत ही होई नी आखो सतनाम सिंह होए माया जी मिल गई खैर गल कोई भी होई असर यह होया कि राणा भी श्रद्धालु बन गए भगत जी ने दौड़ बुलाया कई दिन सत्संग होता रहा और आज आखिरी दिन बड़ा वड्डा पंडाल लगा राणी का सदा तो फिर कौन ना आवे हजारां लोग पंडाल

कि मैं बड़ा ऊंचा हूं। मैं तो हमेशा यही कहना कि मैं बहुत नीवा हूं। मेरा बहन उठना भी नीवियां दे नाल पर एक गल